0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार

0: व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दोनशे 29° अर्थात 13.5 kHz आणि FM बँडच्या 102 MHz आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण श्रोते हो आपण ऐकत आहात। नमस्कार परभणी, प्रसारित करीत आहोत रामप्रहरी कोऱ्या करकरीत मनावर सुविचारांचं शिंपण अर्थातच विचारशलाका हा कार्यक्रम। आज यात अतृप्ती याविषयी संजय पिंपळगावकर यांचे विचार ऐकूयात।

0: गीतकार तुषार जोशी आणि जयश्री अभास्कर यांनी लिहिलेलं हे भावगीत गात होते पद्मजा फेणाणी आणि सुरेश वाडकर. या भावगीतासाठी संगीत होतं विवेक काजरेकर यांचं. आणि याबरोबरच श्रोते हो, आजच्या भावधारा या भावगीतांच्या कार्यक्रमात आता इथेच विसावा घेऊयात. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून. 8 वाजता लगेचच समाचार प्रभात, त्यानंतर म्हणजे 8:15 मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्रावरून आणि 8:30 राष्ट्रीय मराठी बातमीपत्र आकाशवाणीच्या मुंबई
1: बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता.
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है. भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं. आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल. पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. भारत ने कहा इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ. अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए. फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता. अब समाचार विस्तार से. पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा.
5: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है. आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा. आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा. हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया. चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता.
4: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है. एक रिपोर्ट.
6: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे. उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा. इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा. अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़.
4: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी

0: नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन

0: कर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल

0: महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लैवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
1: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द है, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन

उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोते हो, आकाशवाणीच्या या 90 वर्षाच्या गौरवशाली प्रवासाला आज 90 वर्ष पूर्ण होतात. श्रोते हो, जनमनाची वाणी ठरलेली आकाशवाणी तिचा प्रवास प्रेरणादायी आहेच. तसंच माहिती, संस्कार, मनोरंजन आणि लोकभावनांचा सेतू बनत आकाशवाणीने काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपली विश्वासार्हता ओळख जपली आहे. या गौरवशाली परंपरेला आज मानाचा मुजरा.
1: श्रोते हो, आताच आपण आकाशवाणीच्या 90 वर्षांच्या गौरवशाली
2: ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है. सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए. पहले खास खबरों की सुर्खियां. रियासत में 15 जून तक मानसून की रफ्तार सुस्त रहेगी. महकमे ज़राअत की जानिब से तुख्म रेजी में उजलत न करने की अपील. राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से राज्यसभा की मखलुआ नशिस्त के लिए राजेंद्र जैन की उम्मीदवारी का ऐलान. घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा. NTA ने नीट UG के दोबारा इम्तिहान के सवालिया पर्चे अफशा होने के दावे को किया मुस्तरद. अफवाहों पर यकीन न करने की अपील. और धाराशिव ज़िले में 13 आबपाशी मंसूबों में दस्तियाब आबी ज़खीरे को पीने के लिए मुख्तस करने का हुक्म. अब खबरें तफसील से. जुनूब मगरबी मानसून की रियासत में आमद हो चुकी है. ताहम मानसून की पेशरफ्त रियासत में 15 जून तक सुस्त रहेगी. इसलिए महकमा ज़राअत और डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने किसानों से तुख्म रेजी में जल्दी न करने की अपील की है. जुनूब मगरबी मानसून जुनूबी कोकण में दाखिल हो गया है और सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी अजला के कुछ हिस्सों में 9 जून तक औसत ज़ोरदार बारिश मुतवक्को है. ताहम महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशरफ्त 15 जून तक सुस्त रहने की पेशगोई की है. वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी कल नागपुर में सहीफा निगारों से बात करते हुए इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस साल एल नीनो का खदशा है और किसानों को बुआई के लिए उजलत से काम नहीं लेना चाहिए ताकि उन पर दोबारा बुआई की नौबत न आए. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत में राज्यसभा की खाली नशिस्त के लिए राजेंद्र जैन को उम्मीदवारी देने का फैसला किया गया है. पार्टी के रियासती सदर सुनील तटकरे ने कल रात पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद इसकी इत्तला दी. ये नशिस्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कौमी सदर सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई है. इस इलेक्शन के लिए उम्मीदवारी दरख्वास्त दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. राजेंद्र जैन भंडारा गोंदिया ज़िले में एक अहम रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं और 2010 में भंडारा गोंदिया मुकामी इदारों के क़ानून साज कौंसिल हलके से रुकन कौंसिल मुंतखब हुए थे. पकवान गैस यानी घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कल 29 रुपये का इजाफा किया गया है. गुज़िश्ता 3 माह में ये दूसरा इजाफा है. इस इजाफे की वजह से मुंबई में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 912.50 रुपये से बढ़कर 941.50 रुपये हो गई है. दरअसना मरकजी हुकूमत ने कहा है कि आलमी सतह पर पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद मुल्क में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें दुनिया में सबसे कम है. पेट्रोलियम और तबई गैस की मरकजी वजारत ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी तरक्की याफ्ता मीशतों के मुकाबले भारत में घरेलू LPG सस्ता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाले नीट UG के दोबारा इम्तिहान के सवालिया पर्चे अफशा होने के दावे की तरदीद की है. तंजीम ने समाजी राब्तों के ज़राए पर जारी एक पैगाम में कहा कि ये मुनज़्ज़म ग्रोहों का काम है जो तलबा और वालदैन के दरमियान शकूक व शुबहात की सूरतहाल का फ़ायदा उठाकर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं. पैगाम में वजाहत की गई कि इम्तिहानी अमल की मोतबरियत बरकरार है और उम्मीदवारों के महफूज और बेहतर माहौल में इन्हें इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं. NTA ने इंतबाह दिया है कि इम्तिहान के हवाले से सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद के बारे में साइबर क्राइम ब्रांच को फौरी तौर पर आगाह किया जा रहा है और मुतल्लिक़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि नई दिल्ली में हुए तंजीम के एहतजाज में 7,000 शहरियों ने शिरकत की और यह एहतजाज कामयाबी से हमकिनार हुआ है. वह कल छत्रपति संभाजी नगर में नामा निगारों से बात कर रहे थे. उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र

संविधान के इस्तीफे के मुतालबे के लिए शुरू किया गया यह एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं दे देते। दीपके ने मजीद वजाहत की कि यह एहतजाज जल्द ही मुल्कगीर सतह पर किया जाएगा। इस एहतजाज के पस मंज़र में संभाजी नगर में वाक़े उनके घर पर सख्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं। अद्वियात व खुराक इंतजामिया ने रियासत में ममनुआ गुटखा पान मसाला और इस जैसी अशिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 1 जून से 5 जून के दरमियान रियासत भर में 195 छापों में 192 अफराद को गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 1,99,00,000 रुपये की ममनुआ अशिया का ज़खीरा जब्त किया गया। महकमे ने बताया कि ये कार्रवाई एक खसूसी मुहिम के तहत की गई है। इंतजामिया ने वजाहत की कि महकमे की तरफ से रियासत भर में गैर क़ानूनी पैदावार ज़खीरा अंदोजी नकल व हमल और फरोख्तगी की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। गोवा के मडगांव में मुनक़दा ख़वातीन की सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप का खिताब भारत ने रिकॉर्ड 36 मरतबा जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मैच में भारत ने दिफाई चैम्पियन बांग्लादेश को 3-1 से शिकस्त दे दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस शानदार जीत पर टीम की सराहना करते हुए मुबारकबाद पेश की है। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान चंडीगढ़ में खेले जा रहे वाहिद टेस्ट क्रिकेट मैच पर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने 5 विकेटों पर 113 रन स्कोर किए थे और वो अब भी भारत की पहली इनिंग के स्कोर से 451 रन पीछे है। इससे कबल भारत ने अपनी पहली इनिंग में 8 विकेटों के नुकसान पर 564 रन बनाए थे। कल भारत की जानिब से मानव सुथार ने 3 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेटें हासिल की। संडे ऑन साइकिल मुहिम के तहत कल धाराशिव में साइकिल रैली निकाली गई। शिव छत्रपति रियासती खेल अवार्ड याफ्ता डॉक्टर चंद्रजीत जाधव ने सब्ज झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। छत्रपति संभाजीनगर के नौजवान मुसन्निफ़ ऋषिकेश गुलहार के नावल रानोबाचा माड़ को कला गंगा देही नावल एजाज़ हासिल हुआ है। उन्हें कल ये एजाज़ वाशिम के सावित्रीबाई फुले कॉलेज में मुनक़दा एक तकरीब में दिया गया। वाशिम ज़िले के देही कहानी नवीस व नावल निगार बाबा राव मुसड़े ने अपने वालदेन की याद में ये अवार्ड शुरू किया है। रियासती बहबूदीय माधुरीन कमिश्नर ने बीड़ में बहबूदे माधुरीन अफसर प्रिया रानी पाटिल के खिलाफ जाब्ता शिकनी की कार्रवाई का हुक्म जारी किया है। माधुर मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए जिला कलेक्टर के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर यह हुक्म दिया गया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ कल छत्रपति संभाजीनगर शहर के क्रांति चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रुकन काउंसिल अंबादास दानवे की क़यादत में की गए इस एहतजाज में मरकजी हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी की गई। पानी की मुमकिन खिल्लत के पेश नज़र जिला कलेक्टर कीर्ति किरण पुजार ने धाराशिव ज़िले के धाराशिव कलम भूम वाशी और परंडा तालुकाजात में 13 आबपाशी मंसूबों में दस्तियाब पानी के ज़खीरे को आइंदा अहकाम तक पीने के इस्तेमाल के लिए मुख्तस रखने का हुक्म जारी किया है। इसके अलावा इलाके में जानवरों के पीने के पानी को मद्देनज़र रखकर मुतल्लिका मंसूबों में दस्तियाब पानी को महफूज करने पर जोर दिया गया है। मुरुग नसर के पहले ही दिन कल नांदेड़ शहर और मजाफात में तेज़ हवाओं और गरज व चमक के साथ ज़ोरदार बारिश हुई। इस बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी में रखना अंदाजी हुई। हिंगोली ज़िले के कई इलाकों में कल औसत बारिश हुई। बसमत तालुक़े में दोपहर के वक्त तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई। इस वक्त बसमत नांदेड़ शाहरा पर नीला के करीब एक बर्फी टावर के गिरने की वजह से बसमत आसेगांव रास्ता शाम तक आमदो रफ्त के लिए बंद रहा। दरियासना महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में कोकण में कई मकामात, वस्ती महाराष्ट्र के चंद्र मकामात और मराठवाड़ा और विदर्भ के मुख्तलिफ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश के इम्कान की पेशगोई की है। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर। रियासत में 15 जून तक मानसून की रफ़्तार सुस्त रहेगी। महकमा ज़िरात की जानिब से तुख्म रेजी में उजलत न करने की अपील। राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से राज्यसभा की मखलुआ नशिस्त के लिए राजेंद्र जैन की उम्मीदवारी का ऐलान। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का

0: इजाफा। एनटीए ने नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के सवालिया पर्चे अफशा होने के दावे को किया मुस्तरद। और धाराशिव जिले में 13 आबपाशी मनसूबों में दस्तियाब आबी ज़खीरे को पीने के लिए मुख्तस करने का हुक्म। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं। इसके बाद हमारे मरकज़ का अगला मराठी न्यूज़ बुलेटिन सुबह 11 बजे नशर होगा।
1: दोनशे 29 अंश नोमीटर्स अर्थात 1305 किलो हर्ट्सवर आणि FM बँडच्या 102 मेगा हर्ट्सवर आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण श्रोतेहो आपण ऐकत आहात।
2: बदला बदला सवय बदला।
3: मशीन मध्ये कपडे घालण्यापूर्वी चेक नव्हतं केलं का?
2: बदला बदला सवय बदला। आता नजीकच्या बँकेत जाऊन जुन्या फाटक्या नोट्स बदला। जर बँकेने नकार दिला तर RBI ओम्बुड्समॅन कडे तक्रार करा। RBI सांगते जाणकार बना, सतर्क रहा।

मोहम्मद पे सर झुकाते हैं, जो आस्ताने मोहम्मद पे सर झुकाते हैं, नजर में दौलत गुनाहगार भी महशर में बख्शे जाते हैं, गुनाहगार भी महशर में बख्शे जाते हैं, ये किसके इश्क की बेमिसल दाद पाते हैं।

जहाँ के सारे चमनजार ले लहाते हैं, जहाँ के सारे चमनजार ले लहाते हैं। मख्ता अर्ज है, मैं एक जर्रा कुए हबीब हूँ,

0: on this day. So beginning with the, which year are we going to take first?
1: 1915 से शुरुआत करते हैं.
0: जी.
1: 1915 में आज ही के दिन लोकमान्य तिलक द्वारा लिखित गीता रहस्य का प्रकाशन हुआ था और 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था.
0: वेरी ट्रू. मूविंग ऑन टू द ईयर 1948, इंडिया स्टेट ओन्ड कैरियर एयर इंडिया लॉन्च इट्स वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल एविएशन सर्विस विद एन हिस्टोरिक फ्लाइट ऑपरेटिंग बिटवीन मुंबई एंड लंदन.
1: वहीं 1997 में टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने पेरिस में फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया था.
0: In 2002, Serena Williams defeated her sister Venus Williams to win her first French Open tennis title. And in 2004, a rare astronomical event, the transit of Venus across the face of the sun, was successfully observed globally for the first time in 122 years on this day, that is the 8th of June.
1: जी. और रेनू, अब आज के दिन से जुड़े उन अहम नामों की बात करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी थी.
0: जी.
1: आज पुण्यतिथि है भारतीय रंगमंच के उस महान शिल्पकार की जिन्होंने थिएटर को महलों और सभागारों से निकालकर गांव की मिट्टी से की सौंधी खुशबू से जोड़ दिया. हबीब तनवर प्रसिद्ध नाटककार, कवि, अभिनेता और निर्देशक थे. रायपुर में जन्मे हबीब तनवर ने 1959 में नया थिएटर की स्थापना की और छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ मिलकर एक ऐसी नाट्य भाषा गढ़ी जो ना पूरी तरह शहरी थी ना पूरी तरह ग्रामीण, बल्कि दोनों का एक जीवंत संगम थी.
0: जी. एंड टॉकिंग अबाउट हबीब तनवीर, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन इंडियन उर्दू प्ले राइट्स, अ थिएटर डायरेक्टर, पोएट एंड एक्टर. एंड ही वाज द राइटर ऑफ प्लेस सच एज आगरा बाजार एंड चरणदास चोर. एंड वेरी ट्रू, यू हैव स्पोकन अबाउट हिज वर्क विद छत्तीसगढ़ी ट्राइबल्स एट द नया थिएटर, अ थिएटर कंपनी फाउंडेड इन 1959 इन भोपाल. और यहीं पर ही हम थोड़ा सा हबीब तनवीर के मुंह से खुद ही सुनना चाहेंगे कि वो किस तरह इसके बारे में बात कर रहे हैं.
2: सास गारी देवे ननन मुहले वे देवर बाबू मोर

0: थिएटर का मामला बहुत ज्यादा इस तरह का होता है कि जिसमें अपने थिएटर में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, कविता में, जिसका ताल्लुक कल्चर से, उसके इथॉस से, अपने मुल्क की भूभाग से, इन चीजों से उसका रिश्ता इतना गहरा होता है कि किसी और मुल्क में जाके हम कोई खास काम करके पनपना मुझे कम से कम नजर नहीं आया कि हो सकता है, मुमकिन। कभी कभी दिल की अनकही बात गानों में आती है ब्रेस्ट के यहाँ।
1: खिचड़ी खाई, दिन बहलाए, कपड़े फाटे, घर को आए।
2: आज जन्मदिन है बॉलीवुड की उस अभिनेत्री का जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में रुफैले पर्दे पर कदम रखा और फिल्म बॉबी से ऐसी धूम मचाई कि पूरा देश उनका दीवाना हो गया। इससे पहले कि हम आपको उनका नाम बताएं, आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: डिंपल कपाड़िया आज 68 साल की हो रही हैं, लेकिन उनकी अदाकारी में वही जादू भी आज भी कायम है।
1: सामने भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह के 9:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली

कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मर्तबा इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के फ्लेवियो कोबोली को 5 सेटों में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY नाफिज करेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है। सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नफाज के लिए आज एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करेगी। इस मुफाहमत नामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे। इस पेशरफ को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मसावी और हिफान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है। मगरबी बंगाल में ABPMJAY के नफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफिदीन को भारी भरकम सेहत अखराजात से माली तहफ़ फराहम होगा, जबकि मुल्क भर में हिफ्ज़ान सेहत के फवायद के इम्कानात में बिला रुकावट मदद मिलेगी। इससे मेयारी और सस्ती हिफ्ज़ान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्ज़ान सेहत का निज़ाम भी मजबूत होगा। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनक़िद कराया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन की 3 रोजा जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज हरियाणा कानून साज असेंबली की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर्स के प्रिजाइडिंग और नायब प्रिजाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उसके बाद टैगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से वसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशंस ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी 23 जबानों में 146 इलाकाई जबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। गुज़श्ता 12 साल के दौरान

0: भारत ने ठोस पॉलिसी इकदामात और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। दलदली जमीनों, मैंग्रोव्स और साहिली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आलूदगी को कम करने और दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरियाओं के माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने के मकसद से साल 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम का आगाज किया गया था। 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माह के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक कलीदी सुतून है, जबकि इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगानियों ने कल नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वसीतर मुजाकिरात किए। गहरे तहजीबी रबतों का जिक्र करते हुए वजारत खारजा ने कहा है कि भारत इंडोनेशिया जामे कलीदी शराकत दारी जारी रहेगी, जिससे ताउन के नए शोबों में इजाफा होगा और ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। दोनों वुजरा ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने भारत इंडोनेशिया जामे कलीदी शराकत दारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और सियासत, दिफा और सिक्योरिटी के अलावा बहरी तजारत, सरमायाकारी, दवासाजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती शोबे और आवाम से आवाम के दरमियान तबादलों में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के उमूर पर तबादले ख्याल किया। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर देर रात मिसाइलों से हमले किए हैं। 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद से इसराइल पर इस तरह का ये पहला हमला है। ईरान के सरकारी नशरिए ने भी इन हमलों की तस्दीक की है। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को बताएंगे कि वो ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज करें। सदर ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि ईरान मिसाइल हमले रोक दे और मुजाकिरात की तरफ लौट आए। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल के साबिका हमले वाशिंगटन के साथ मिलकर नहीं किए गए थे। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि इसराइल के कई इलाकों में ईरान हमलों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि इसराइल की जानिब बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। शिमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिससे खत्ते में कई हफ्तों से जारी जंगबंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए, जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम पॉइंट के तौर पर शिनाख्त किया था। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के फ्लाविओ कोबोली को 5 सेट के सनसनी खेज फाइनल में हरा कर पहली मरतबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फ्लाविओ को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मरतबा इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के फ्लाविओ कोबोली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: 229 अंश नोमीटर सरतात

0: गाने ने धूम मचाई थी और अगले पायदान पे हे असे बरेच शब्द प्रयोग त्यांनी या कार्यक्रमातून रूढ केले होते. आता ऐकूयात 1959 साली वार्षिक कार्यक्रमात नंबर 1 वर असलेलं हे गाणं.
1: मगर आपने तो कहा था कि
2: हीरा,
1: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है. यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती. मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
2: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता.
1: और भला क्या काम हो सकता है?
2: और बहुत से काम हो सकते हैं. हाँ वो
1: हाँ
2: क्या
1: मुर्गी?
2: हाँ पकड़ लाओ
1: मुर्गी.
2: हाँ
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है. अभी पकड़.

0: वनिता मंडळ हा कार्यक्रम आपण ऐकला आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनीवरून.
1: चार पायांवरून दोन पायांवर उभा राहिलेला, हातात दगडी हत्यारं घेऊन निसर्गाशी झुंजणारा आणि आज बुद्धीच्या जोरावर अंतराळात झेप घेणारा असा हा मानव, त्याचा प्रवास कसा झाला असेल, कोण होते आपले पूर्वज, कशी घडली आपली मानवी उत्क्रांती? श्रोते हो, आकाशवाणीच्या 90 वर्षांच्या गौरवशाली प्रवासानिमित्त आम्ही घेऊन आलो आहोत आकाशवाणी मुंबईनं प्रसारित केलेली अत्यंत लोकप्रिय आणि अभ्यासपूर्ण मालिका मानवी उत्क्रांती. मानवी उत्क्रांती मालिकेचे सर्व भाग आता उपलब्ध होत आहेत थेट आकाशवाणीच्या यूट्यूब चॅनलवर. तेव्हा इतिहास जाणून घ्या, विज्ञानाची गंमत अनुभवा आणि भूतकाळातून भविष्याचा वेध घ्या. आजच आकाशवाणी मुंबईच्या यूट्यूब चॅनलला भेट द्या, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि अवश्य ऐका मानवाच्या जन्माची अद्भुत गाथा मानवी उत्क्रांती.
0: दुपारचं 1 वाजतोय, थोड्याच वेळात ऐकूया हिंदीतून बातमीपत्र आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है. श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा. उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे. प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है. उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे. आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं. इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं. पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हा कार्यक्रम मुंबई केंद्रावरून पुनःप्रसारित करण्यात आला. 2:15 आहेत, ऐकूया दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है. पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी. इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया. इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा. लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं. और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है. श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा. उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे. प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है. निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है. इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है.
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही. आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश

0: में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

0: आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की।

0: है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हिंदी समाचार आणि 6:05 इंग्रजी समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही त्या सहक्षेपित करीत आहोत.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं. ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किए जा रहे हैं. लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा.
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है. इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है.
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही. आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है.
1: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है. भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है. सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है. नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी. वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है. पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है. ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया. न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है. बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया. भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने

0: पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। दिल्ली उच्च न्यायालयेन CBSE बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये अनियमितता संदर्भे केंद्र सर्वकाराय तथा CBSE बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं प्रदत्तम्। भारतेन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरा चिंता प्रकटिता। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारत दलम् अफगानिस्तान दलम् एकेन वारेणैव 300 धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं पञ्चदिवसीय विजयम् अभिलेखितवत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां दरिद्रजनानां कल्याणम् एव गत द्वादश वर्षेषु शासनस्य नीति निर्माणस्य आधारः अभवत्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् काले भारतदेशः बहूनि परिवर्तनानि अनुभूतवत्, येषां केन्द्रे निर्धनाः वञ्चिताश्च जनाः आसन्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणं, स्वच्छ भारत अभियानं, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन इति तथा आयुष्मान भारत योजना इत्यादीनां मुख्योद्देश्यम् अस्ति यत् जनानां कृते गौरवपूर्णं जीवनम् अवसराणां सुनिश्चयं कर्तुम् अपि आसीत्। निर्धन जनानां जीवनस्तरे स्थितस्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत्।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। एतेन सा योजना सम्पूर्णेपि देशे कार्यान्विता भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा विस्तार दिशि महत्वपूर्णं पदम् इदम्। राज्य सर्वकारः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन सह दिल्ली नगरे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा तथा पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी उपस्थितौ भविष्यतः। दिल्ली उच्च न्यायालयेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये जनहित याचिकायां केन्द्र सर्वकाराय तथा CBSE बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं निर्गतम्। न्यायमूर्तिद्वयं नीना बंसल कृष्णा तथा मधु जैन महोदयाभ्यां राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघस्य याचिकायाः आधारेण केन्द्र सर्वकारात् CBSE बोर्ड इत्यस्मात् च उत्तरं याचितम्। याचिकायाम् आंकिक मूल्यांकन प्रणाल्याः निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता एषु विषयेषु प्रश्नाः उत्थापिताः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य अपराह्णे नवदेहली नगरे भारत सभा अभवत्। अस्यां सभायां विपक्षस्य विभिन्नाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस पार्टी इत्यस्य वरिष्ठः नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी इति दलस्य प्रमुखः अखिलेश यादवः, तृणमूल कांग्रेस पार्टी इत्यस्य अध्यक्षा ममता बनर्जी, वरिष्ठः नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, NCP SP नेता सुप्रिया सूले च आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे उक्तवान् यत् सभायां 25 राजनैतिक दलानि उपस्थितानि आसन्। सः अवोचत् यत् सभायां विभिन्नेषु विषयेषु चर्चा कृता, सर्वे अपि स्वमतं व्यक्तवन्तः।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम

0: श्रोते भावधारा कार्यक्रमात मंजुषा केळकर यांनी गायलेली वंदना विठणकर यांची गझल आपण ऐकली.
1: चार पायांवरून दोन पायांवर उभा राहिलेला, हातात दगडी हत्यारं घेऊन निसर्गाशी झुंजणारा आणि आज बुद्धीच्या जोरावर अंतराळात झेप घेणारा असा हा मानव, त्याचा प्रवास कसा झाला असेल, कोण होते आपले पूर्वज, कशी घडली आपली मानवी उत्क्रांती. श्रोते हो, आकाशवाणीच्या 90 वर्षांच्या गौरवशाली प्रवासानिमित्त आम्ही घेऊन आलो आहोत आकाशवाणी मुंबईनं प्रसारित केलेली अत्यंत लोकप्रिय आणि अभ्यासपूर्ण मालिका मानवी उत्क्रांती. मानवी उत्क्रांती मालिकेचे सर्व भाग आता उपलब्ध होत आहेत थेट आकाशवाणीच्या यूट्यूब चॅनलवर. तेव्हा इतिहास जाणून घ्या, विज्ञानाची गंमत अनुभवा आणि भूतकाळातून भविष्याचा वेध घ्या. आजच आकाशवाणी मुंबईच्या यूट्यूब चॅनलला भेट द्या, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि अवश्य ऐका मानवाच्या जन्माची अद्भुत गाथा मानवी उत्क्रांती.
0: प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसहित 558 KHz आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. रात्रीचे 8:45 होत आहेत. ठीक 8:45 समाचार संध्या आणि रात्री 9 News@9 हे दोन्ही बातमीपत्र आम्ही दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करू. त्यानंतर 9:15 स्पॉटलाईट आणि 9:30 पब्लिक स्पीक हे दोन कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित केल्या जातील. सुरुवातीला 8:45 समाचार संध्या दिल्ली केंद्रावरून.
2: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए. पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत. भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा. भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा. और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित

0: प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2000

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जलजनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा।

0: 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
3: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग, रोग पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जम्हूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला
1: आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी हैव बीन ट्राइंग टू गिव इट न्यू शेप, न्यू डायनामिज्म।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481-2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9282

0: 8909404 इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफ़ी आगे था, केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की धन के उसकी सब्जी की फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ में लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो।
0: जी, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम जी, प्रणाम
0: जी।
1: नमस्कार। नमस्कार जी।
2: सर जी, मेरा कुछ जिज्ञासाएं उत्सुकताएं हैं उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: ब्रह्मज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं और आजकल मोटे अनाजों की भी काफी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफी संभावना है और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज्यादा तो वहां केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है, जिससे हमारी उत्पादन लागत

0: भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो वो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
2: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर किसान भाई एक या दो या ज़्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है। लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए, लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे, तो वहाँ पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है
1: हो जाती
2: और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: जी डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश
1: जी,
3: राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
3: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है
1: डॉक्टर मीना।
2: तो राकेश जी, जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया, वो क्या है ना, ज्यादातर आपकी मिट्टियां अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई। तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है। मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल है और इसकी कमी बहुत ज्यादा है। किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा,
1: तो इसलिए सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी है जो किसान कराते रहे। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
4: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
4: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, अभी मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी,
4: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
1: डॉक्टर डबास,
0: योगेश जी, जो भी हमारे फसल के अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से फीड को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीजें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूंगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें।

0: से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें, तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
2: हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकता है किसानों के खेत बचाने के लिए?
0: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी, और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उसे केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है, और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो, और किसानों के जो संगठन बने आज के किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
3: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
1: जी डॉक्टर मीना।
4: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा, जो क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है, और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी सीजनल फसल है जो एक सीजन में खत्म होती हैं, उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए, और जितना ओपन एरिया है वहां से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके, और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ जरूर ले। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए?
4: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है, तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, या कभी हम ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम

0: हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे, जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे, जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं, उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में? डॉक्टर,
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पे इसका उपयोग करना चाहिए और अगर हम वो उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना आदि का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाएं, साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें तो ये हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारे गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से हम गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जाए कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद हैं जो उनके माध्यम से दे सकते हैं या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सुडोमोनास का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाए। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
3: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
3: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
2: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक स्मट एक गेहूं में बीमारी वो आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगी, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीजें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है।

0: बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है, जैसे हमने रुपाई करनी है, तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है, और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में इसको पौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं, जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजोला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं चिरमेरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
2: प्रश्न ये है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजातीय लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
3: जैसे इंद्रभान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भाग है तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनके अवेलेबलता मतलब वो वैसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है, और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुंच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: वहाँ पे ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है, और कहीं का किसान अगर वहां से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551 1551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपको यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 01125841670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहां पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है
1: जी। हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
4: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी।
4: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी एक
1: जी। राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछे।
4: जी जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी वो खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना
1: जी? डॉक्टर मीना
3: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकार है वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या है ना जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जाँच करा लें, क्योंकि जाँच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की

0: समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ही सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखो एक्सेस उर्वरक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी। और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।

0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
1: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।